भारतीय फिल्म से ये नगमा 1970 रिलीज़ फिल्म मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ें थी, शंकर जयकिशन का संगीत और राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी।

आशा भोसले की आवासी सजा ये गीत आप सुन रहे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना, फिल्म का नाम पगला कहीं का, जो रिलीज हुई थी 1970 में। साथियों, जीवन की एक नव भोर का आगमन तब भी होता है जब किसी भी परिवार में नव शिशु का आगमन होने वाला होता है। उसके आने की दस्तक से सारा घर, सब रिश्ते खुशी के माहौल से सज जाते हैं। ऐसे ही सुंदर खुशी को दर्शाता ये गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत जिंदगी फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 रिलीज ये फिल्म थी। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

मुकेश लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, इंद्रजीत सिंह तुलसी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम शोर, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1972 में। और अब आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है ये रचना।

पंडित जसराज की स्वर से सजा ये रचना अभी आपने सुनी। वसंत देसाई का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना थी। साथियों, फिल्म का नाम लड़की सह्याद्री की, जो रिलीज हुई थी ये फिल्म 1966 में। इसी गीत रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: నిలయంలో సమయం సరిగ్గా 6 గంటలు కావస్తుంది. మరి కొద్దిసేపట్లో హిందీలో వార్తలు, 6:05 నుండి 6:10 వరకు ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మై మనోజ్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे. वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे. उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा. श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं. 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी

0: भागीदार। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत, एंड आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9, रेनबो एड्स कलर्स योर लाइफ। वेल, आज है मंडे, एंड मंडे की शुरुआत में हर कोई बोलता है कि हम मंडे से वो करेंगे, हम मंडे से ये करेंगे, मतलब हम मंडे से कुछ ना कुछ नया शुरू करने की बात करते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा नया कुछ हो रहा है वो है G7 समिट 2026 इन फ्रांस। विल बी टॉकिंग अबाउट इट, स्टे ट्यून्ड विथ मी, वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। एंड जस्ट इमेजिन, इतने इतने सारे कंट्रीज, लाइक यू नो, 7 कंट्रीज, दे आर टॉकिंग अबाउट द इकॉनमी, राइट? सो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली ग्रेट, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 5 बिगेस्ट इशूज व्हिच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस समिट। वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं, यार मंडे से मैं जिम जाऊंगा या मंडे से मैं जिम जाऊंगी, एंड वो मंडे कभी आ ही नहीं पाता है, राइट? जैसे कई दुकानों में हम जाएं तो आज नकदी कल उधार, मतलब उधार की बात है अब कल करना, कल वो कभी आता नहीं है। तो ऐसे कितने लोग हैं भाई जो यही समझते हैं कि बस हम जो भी काम है वो कल से करेंगे एंड कल हमारा कभी नहीं आता। वेल, उन सब चीज़ों में मैं भी हूँ, लेकिन जब से मैंने रियलाइज़ किया है कि कल कभी नहीं आता है, इवन इफ़ इट इज़ फॉर वन डे, मैं ट्राई करती हूँ कि बस मैं उसी दिन उस काम की शुरुआत कर लूँ। वैसे जून में ये कहा जा रहा था, जैसे इट वॉज़ 1st of June, सो महीने का फर्स्ट वॉज ऑन मंडे, तो कितनी अच्छी बात थी कि सोचो महीना भी उस दिन शुरू हो रहा है एंड मंडे भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम था, इफ़ इट ऑल दे वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। एंड टुडे इज़ 15th of June, ऑलमोस्ट मिड ऑफ द मंथ। तो भाई कहाँ हैं वो लोग जो 1st of June को बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले थे। आई वुड वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू, वेदर यू हैव स्टार्टेड और नॉट, और अगर आपने स्टार्ट किया तो क्या आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं, बस जाने बताने के लिए आपको मैसेज करना है +9140434322 पर, सॉरी 2323-4822 पर। देखिए काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ, आई गॉट कन्फ्यूज विद द नंबर्स, आई रिपीट दैट वन फॉर यू, दैट्स +9140-2323-4822। इस पर आपको मैसेज करना है एंड बताना है कि भाई आपने 1st of June को जो सोचा था स्टार्ट करने का, क्या आप अभी भी उस पर कायम है या नहीं। वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट G7 समिट व्हिच इज हैपनिंग इन फ्रांस। Let's listen to one song. By Doors. The song is The End. It is definitely not the end. It is just the beginning. But yes, when there's a door, there's an opening. And yes, new doors bring loads of opportunities, loads of new things. So stay tuned with me. This is 101.9 FM with me, RJ Preet.

वेलकम टू द सेकेंड सेगमेंट ऑफ नमस्ते हेलो आदाब। एंड अब हम प्ले करेंगे थोड़े हिंदी गाने। हमने वेस्टर्न सॉन्ग्स तो काफ़ी सुन लिया, अब सुनते हैं थोड़े पुराने नए चटपटे गाने ओनली फॉर फ्रॉम बॉलीवुड। वेल, अगर हम आज की बात करें तो सुरैया, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी अपनी आवाज़ के लिए, अपनी अदाकारी के लिए, आज उनका बर्थडे है एंड उन्हें याद करते हुए उनके लिए एक गाना ज़रूर प्ले होगा। बट उससे पहले मैं सुरैया जी के बारे में आपको बताऊं। उनका पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। शी वॉज बॉर्न ऑन 15th of June 1929 एंड पास्ड अवे ऑन 31st of January 2004। वेल, उनका नाम सिर्फ सुरैया काफ़ी था। सुरैया जमाल शेख उन्हें कभी नहीं बोला जाता था। सुरैया इटसेल्फ वाज अ कंप्लीट नेम बिकॉज एवरीबडी न्यू हर बिकॉज ऑफ हर यूनिक वॉइस। शी वॉज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड प्लेबैक सिंगर हु वर्कड इन इंडियन फिल्म्स एंड काफ़ी सारी मूवीज़ में इन्होंने काम किया है। इनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम है मुमताज़ बेगम अज़ीज़ जमाल शेख। इनका फुल नाम है सुरैया जमाल शेख, जो मैंने आपको बताया। एंड अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो अनमोल घड़ी, मिर्ज़ा गालिब, दिल लगी, दर्द, दास्तान, बड़ी बहन। बड़ी बहन वो सच अ बिग सच अ नाइस मूवी। आई रिमेम्बर मैंने बहुत बचपन में देखा है। वो 1949 की मूवी है, बट स्टिल इफ़ यू वॉच इट नाउ यू वुड लव द स्टोरी। पुरानी मूवीज़ की बात ही कुछ अलग होती थी। अगर हम इनकी कुछ और मूवीज़ के नाम बात करें तो वो है अफसर, सनम, शमा। शमा वॉज रिलीज इन 1961। वी हैव शायर, जीत, विद्या एंड वी हैव मेनी मोर फिल्म्स लाइक दैट, लाइक परवाना, प्यार की जीत, दीवाना, रुस्तम सौरभ, वारिस, फूल, दुनिया, सिंगार, तदबीर, बालम। आई थिंक जितने भी ये फेमस मूवीज़ थे उनमें अक्सर आप सुरैया जी को देख सकते थे। अभी भी अगर आप देखना चाहें तो गो बैक एंड ट्राई टू सर्च दीज मूवीज़। ट्रस्ट मी, आप बहुत खुश होंगे ज़माने की मूवीज़ देख के। वेल, हम सुरैया जी को आज जब याद कर ही रहे हैं तो आज उनकी फिल्म गजरे से उनका एक गाना प्ले करते हैं, दूर पपीहा बोले। दैट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। स्टे ट्यून्ड, दिस इज नमस्ते हेलो आदाब ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9। रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ।

पत्थर की देवी, तू मान ले मेरा कहना, आज बहुत मुश्किल है अकेला लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना, मेरे दिल का कमरा खाली है। मेरे दिल का

वेल दैट वॉज बाय सुरैया एंड फाइनली आज उनके बर्थडे पे वी कुड लिसन टू हर सॉन्ग. द सॉन्ग नेम वॉज बेकरार है कोई एंड दिस इज़ फ्रॉम द मूवी शमा परवाना. आई डोंट नो, आई हैवन्ट वॉच्ड इट, बट नाम सुन के तो लग रहा है कि भाई बस जलने वाली बात हो रही है. वेल अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, वी ऑल्सो हैव द फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोइंग ऑन. फॉर 15th of June वी हैव स्पेन वर्सेस केप वर्दे टुडे अराउंड 9:30 एंड टुमारो वी हैव बेल्जियम विथ इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया विथ उरुग्वे 3:30 AM एंड ईरान विथ न्यूजीलैंड 6:30 AM. वेल द फीफा फैंस वुड डेफिनेटली नो हाउ टू प्रोनाउंस ऑल दीज नेम्स. आई माइट बी रियली रियली रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नेम, बट येस इट्स अ नाउन एंड वी कैन प्रोनाउंस इट द वे वी वॉन्ट, राइट? सो नाउन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नाउन को जैसे मन चाहे वैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें तो जर्मनी हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू ट्रूली सेंड अ मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, क्रशिंग कुराशाओ. आई थिंक इट्स येस कुराशाओ, आई थिंक इट्स करेक्ट. 7-1 इन ग्रुप ई. द स्कोर लाइन इज़ ऑलरेडी बींग कम्पेयर टू जर्मनी इज़ फेमस 7-1-1 ब्राज़ील इन 2014. Germany now look like a serious title contenders. The World Cup has officially woken up. Germany did not just win, they announced themselves. This is about the FIFA World Cup. And there's a feel-good story about the tournament as well, which I'll be sharing right after a beautiful number. Stay tuned.

दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

0: 101.9.
1: Well, we are talking about the FIFA World Cup, and there's a feel-good story of the tournament which we were supposed to talk. And the story is, despite the heavy defeat, Curaçao scored their first ever World Cup goal for a nation of roughly 160,000 people, making its World Cup debut. Simply being here is history. Many fans online are praising their spirit and refusal to give up. And sometimes the biggest victory is not winning the match, it's earning your place on the world's biggest stage. कई बार होता है ना कि हम जो मेन गेम है ना वो हार जाते हैं, लेकिन जैसा हमारा पार्टिसिपेशन होता है उस गेम में, लाइक काबिले तारीफ, यू डोंट वॉन्ट टू गिव अप एंड आप अपनी उसमें पूरी जान लगा देते हैं. पीपल टॉक अबाउट दैट काइंड ऑफ मैच. भले ही कई बार यू नो विनिंग एंड लूजिंग इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम, नॉट कई बार, हर बार, बट हाउ यू पार्टिसिपेट, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट्स ऑल वॉट मैटर्स. एंड कहा जाता है कि जो गेम है वो आपकी स्पिरिट दिखाता है, एज इन आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, हाउ यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, दैट शोज़ योर ट्रू सेल्फ. सो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी, कई बार होता है हमें नहीं मालूम होती है, अगर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता करना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि आप किसी भी गेम में प्रेशर में आप क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं. सो वो आपका रियल सेल्फ होता है. कई बार यू नो जैसे मैं जब प्रेशर में रहती हूँ, मेरा चेहरा देखने लायक होता है, मैं वैसी दिखती नहीं हूँ जो मैं एक्चुअली दिखती हूँ. दैट आई हैव नोटिस्ड कपल ऑफ टाइम्स कि हाँ यार, मैं काफ़ी टेंशन में दिखती हूँ. दैट मीन्स अगर कुछ भी प्रेशर आया तो मैं टेंशन ले लेती हूँ. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. हमें हमेशा कूल रह के खेलना चाहिए, राइट? ओके. एंड रेडियो शौकीन जी का मैसेज आया है, उन्होंने पुराने कैसेट्स भेजे हैं किशोर कुमार जी के, एंड कहते हैं शायद उन्हें गाना पसंद आया या किशोर जी के गाने सुनना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता. बट येस, बाय द वे, सुरैया जी का गाना भी इन्हीं ने रिक्वेस्ट किया था. चलते हैं शो को आगे बढ़ाते हुए. एक बहुत ही प्यारे से किशोर जी की बात हो रही है, तो किशोर कुमार साहब की आवाज़ में एक हसीना थी, सुनते हैं. बने रहिए हमारे साथ, शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो एफएम 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत.

0: FM Rainbow 101.9
1: वलम फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं एंड आज जो मैच है वो होने वाला है उरुग्वे वर्सेस सऊदी अरेबिया के बीच में अ फैसिनेटिंग क्लैश बिटवीन साउथ अमेरिकन ट्रेडिशन एंड अ सऊदी टीम दैट शॉक्ड द वर्ल्ड बाय बीटिंग अर्जेंटीना इन द 2022 वर्ल्ड कप एंड वेल दैट इज अबाउट टुमारो नॉट टुडे. That would be around 12:30 a.m. Today it is Spain versus Cape Verde, and Cape Verde are making their World Cup debut against one of the tournament favorites. Their coach says they are not here just to participate; they want to compete and showcase their nation to the world.

0: to enjoy evergreen melodious songs.
1: Well, that is Yaar Bina Chain Kahare, and this is from the movie Sahib. एंड बहुत ही प्यारा सा गाना है. लाइक यू नो, अगर हम रेट्रो की बात करें तो रेट्रो में वन ऑफ द पार्टी नंबर्स हुआ करता था, जहाँ पे लोग जाते डांस करते. एंड आजकल के अगर हम गाने देखेंगे तो गाने जो है पुराने वाले वापस आ रहे हैं, बट विद अ न्यू फील, एंड दे आर कॉलिंग इट बॉली टेक. मतलब टेक्नो म्यूज़िक होती है थोड़ी सी, एंड देन ऑल द बॉलीवुड सॉन्ग्स जिसमें थोड़ी टेक्नो म्यूज़िक डाल दी जाती है. सो पीपल आर इन्जॉइंग द सेम सॉन्ग्स, इट्स जस्ट कि अभी टाइम बस चेंज हो गया है. टाइम फ़िलहाल हो चुका है ऑलमोस्ट 11:57 इन द स्टूडियो, एंड वक्त हो चला है कि हम न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ चले. सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे साथ. न्यूज़ हेडलाइंस के बाद हम करते हैं और भी कुछ मीठी प्यारी बातें अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द डे, एंड ऑफ कोर्स 1 to 2 आई एम वेटिंग फॉर द कॉलिंग शो. इट्स बीन लॉन्ग कि मैंने आप लोगों से बात की है. सो बने रहिए हमारे साथ, शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, एंड आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और GST के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30

वेलकम बैक टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ नमस्ते हेलो आदाब। एंड अभी हम बात करेंगे हाइलाइट्स ऑफ द डे के बारे में, जो दो तीन चीज़ें और बच गई है हमें शेयर करने के लिए। दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत। एंड अगर हम आज के बारे में बात करें तो ग्लोबल फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, टुडे इज़ ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेटिंग विंड एनर्जी एंड द फ्यूचर ऑफ क्लीन पावर। A single large wind turbine can generate enough electricity to power thousands of homes annually. So just think ki hawa mein kitni shakti hai, pavan shakti, right? Well, today is Global Wind Day, and this is to promote awareness about renewable energy and sustainability. We also have World Elder Abuse Awareness Day. This we will be talking in the fourth hour, and we also have Magna Carta Day. It commemorates the signing of the Magna Carta in 2015, a milestone in the history of democracy and civil rights. And aaj hai Nature Photography Day, a perfect excuse to put down your phone for a moment and capture the beauty around you. So bahut sare log hote hain jinhe na nature ki photos lena bahut pasand hai, and wo itne acche acche pictures dalte hain apne Insta handle pe ya kahin pe bhi ki unke friends bolte hain yaar tum baaki cheezon ke pictures to bahut acche lete ho but hamare pictures kyun nahi acche lete. भाई समझो, उनका फोकस होता है नेचर पे. अब आप इतने नेचुरल नहीं होते हैं तो क्या कर सकते हैं, राइट? वेल, अगर हम फन स्टोरीज के बारे में बात करें तो विंड नेवर ट्रूली स्टॉप समवेयर ऑन अर्थ, देयर इज ऑलवेज एयर मूविंग समवेयर अराउंड द प्लैनेट. इफ़ यू कुड गेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवर फ्रॉम वन ऑफ द सोर्स, आप क्या चूज करेंगे, सोलार, विंड या हाइड्रो पावर? ह्यूमन पावर ट्रेडमिल्स फॉर योर नेबर्स, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, राइट? एंड यू नो, अगर हम गानों की बात करें तो सम सॉन्ग्स आर लाइक द विंड, ईयर्स पास, ट्रेंड्स चेंज बट दे कीप फाइंडिंग देयर वे बैक इन टू आर प्ले लिस्ट. एंड इसी तरह से पुराने गाने वापस से सबकी प्ले लिस्ट में इसलिए आ रहे हैं बिकॉज रिमिक्सेस बनते जा रहे हैं, न्यू गाने आ नहीं पा रहे हैं, रिमिक्स पे रिमिक्स, एंड दैट्स हाउ दे आर फाइंडिंग देयर प्लेस इन द प्ले लिस्ट. So we will be talking about all these things in the show in the third segment. Stay tuned, bane rahiye hamare saath. This is Namaste Hello Adab, only on All India Radio Rainbow FM 101.9. Rainbow ke saath hai life rangin, and main hu aapke saath aapki Preet. Abhi hum sunenge thode 90s.

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఆ ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: वैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आपको ऑप्शन मिले कि अगर आपको फ्री वाली इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए एंड आपको ऑप्शन हो सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, ह्यूमन पावर ट्रेडमिल्स फॉर योर नेबर्स, देन आप क्या करेंगे? तो आई थिंक अभी ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफ़ी ऐड सुनी है, जहाँ पे हर घर सोलार होम बन सकता है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एकदम ज़ीरो आ जाएगी एंड आप सोलार सिस्टम यूज़ करके, नॉट द सोलार सिस्टम कम्प्लीटली बट या सोलर एनर्जी यूज़ करके आप अपने घर पे लाइट्स लेके आ सकते हैं. सो सच अ ग्रेट इनिशिएटिव, राइट? जस्ट थिंक ऑन दोज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जो आई थिंक मेरे अकेले रहने पे गर्मियों में मेरे घर के बिल 5-5, 6-6 हज़ार आए. एंड आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जो लोग पूरी फैमिली के साथ है, मतलब 6-7 लोग के घर पे, उन लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल 35-40 हज़ार भी आए. एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि मेरा ही पहली बार इतना ज़्यादा हाई आ रहा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है देयर शुड बी सम ग्लिच. बट देन लोगों के जब 30-40 थाउजेंड सुने, तब तो भाई मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइक 30-40 थाउजेंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आए. यार मैंने लोगों का तो एक महीने का खर्चा निकल जाता है इससे, 30-35 हज़ार से, एंड लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल ला रहे इतने इतने महंगे. क्या बात है, नहीं? कितनी सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक है और हम ऐसे ही छोड़ देते हैं. सो बस अपने घर को एकदम इलेक्ट्रिसिटी फ्री बनाइए, जहाँ पे आप सोलर एनर्जी यूज़ करके लाइट्स यूज़ करें एंड अपना बिल ज़ीरो करें. सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. And now there's a beautiful song coming up your way, one of my personal favorites, that is sung by Lata Mangeshkar and SP Bala Subramaniam. Song is Aake Teri Baahon Mein, movie ka naam hai 1.

तो अभी एक मैसेज आया हमें, कहते हैं नमस्ते आरजे जयश्री जी। भाई मैं जयश्री नहीं हूँ, मैं हूँ प्रीत। कहते हैं आगे हैप्पी हैप्पी डे, गुड आप आए, कुछ गावर माहौल बन गया, दिल बहल जाता है आपके आने से। अब मुझे नहीं पता अब आपका दिल सिर्फ जयश्री के आने से बहल रहा है या हमारे आने से भी कुछ फ़र्क पड़ा है। आगे कहते हैं बंद रखते हैं जुबान, लब खोला नहीं करते, चांद के सामने सितारे बोला नहीं करते, याद करते हैं तुमको हर पल लेकिन ये राज होठों से कभी खोला नहीं करते। तो भाई ये राज मत बना के रखिए, आप बता ही दीजिए क्या है राज, हम भी जानना चाहेंगे। एंड इसके साथ वक्त हो चुका है 12:50 इन द स्टूडियो, दैट मीन्स 10 मिनट्स मोर एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे आपसे, आप हमसे, एंड एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक रहने वाला है। सो आई एम होपिंग, मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ, आई विल गेट टू टॉक टू एवरीबडी। सो जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे पुराने लिसनर्स हैं, प्लीज़ बहुत दिन हो गया आपसे बात करके, आइए बात करते हैं रूबरू होते हैं एक दूसरे के साथ। सो मिलते हैं 1 बजे के बाद, तब तक के बने रहिए हमारे साथ, शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत।

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: Well, it's 1:01 in the studio. That means अब वक्त हो चुका है कि हम चले अपने हेलो रेनबो की तरफ, जहाँ पर हम आपसे और आप हमसे बात कर सकेंगे. एंड आज का जो स्पेशल टॉपिक है, सबसे पहले तो आज है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे. दिस इज़ अ UN recognized डे एंड encouraging respect, dignity and protection for older adults. क्या होता है कई बार जब हमारे घर में लोग बूढ़े होने लगते हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े होते हैं या दादा दादी होते हैं, हम वक्त चलते अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि हम वो छोटी छोटी बातों में उनका अनादर करना शुरू कर देते हैं, जो हमारा इंटेंशन नहीं होता है, बिल्कुल भी दिल में नहीं होता है कि हम किसी को डिसरेस्पेक्ट करें. बट चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है, हमें पेशेंस कम होता है, हमें सब कुछ कम होता है, इसीलिए हम अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को वो सम्मान देना, वो इज्जत देना, वो रेस्पेक्ट देना हम कई बार भूल नहीं जाते, बट हम उसे चूक जाते हैं. तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप करेंगे अपने बड़ों के साथ तो उन्हें फील होगा कि उन्हें हम इज्जत दे रहे हैं? बस आपको यही आज कॉल करके बताना है. दिस इज़ जस्ट यू नो जस्ट टू मेक श्योर दैट पीपल लिसनिंग टू अस दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, वट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट पेस यू नो इन एन एल्डर पर्सन्स लाइफ. दे बिकम वेरी सैड क्योंकि बुढ़ापे की तरफ जैसे जैसे वो लोग जाते हैं वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, उनका स्ट्रेंथ कम होता है, उनका बहुत कुछ चीज़ें उनके यूथ के समान नहीं होती है. सो वो हर चीज़ के लिए ऑलरेडी डिमोटिवेटेड होते हैं. सो घर से ये सपोर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लाइक टुडे वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग दिस सो दैट पीपल आर अवेयर ऑफ इट. दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि हम घर में ऐसी कौन सी छोटे छोटे से काम कर सकते हैं जिससे हमारे बड़े लोगों को घर पर रेस्पेक्टेड फील हो. सो बस यही कॉल करके आपको बताना है. कॉलिंग लाइन्स आर 0402323-0030, 0402323-4821 एंड 0402970-4715. सो बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ आज रेडियो में एंड इंतज़ार है आप लोगों के कॉल का. चलिए बात करते हैं. काफ़ी समय हो चुका है आप लोगों से बात करके. सो वेटिंग फॉर योर कॉल्स. स्टे ट्यून्ड. दिस इज़ हेलो रेनबो ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत.
2: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్.

0: सो चलते हैं हमारे फर्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैडम. मैं मधुलिका बोल रही हूँ. ठीक
0: नमस्ते मधुलिका जी, कैसी हैं आप?
1: है. आप बहुत दिन के बाद आए मैडम.
0: बहुत दिनों के बाद आई।
1: आपका ला हो गया क्या? कहाँ
0: अभी मेरा LLM चल रहा है, मास्टर्स
1: पे से?
0: केशव मेमोरियल।
1: अच्छा, हमारा बेटा भी एडवोकेट है पेंडा
0: अच्छा, नाइस।
1: कंटी से, उनका
0: हाँ,
1: भी LLM चल रहा अभी सेकेंड ईयर.
0: अच्छा, नाइस नाइस। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है।
1: वीना वीना वानी मैडम है ना वहाँ प्रिंसिपल. हाँ
0: यस यस, केशव मेमोरियल में, राइट
1: हाँ जी.
0: जी।
1: और आप कहीं पढ़ाना है तो बोलिए.
0: अभी हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, हम ऑन एयर है। सो
1: हाँ जी.
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: हम
0: तो
1: मेरे कने तो है ना कोई भी नहीं है,
0: हाँ
1: बुड्ढे लोग हैं तो. और अभी हमारे हस्बैंड भी एक्सपायर्ड हो गए,
0: ओ आई एम सो
1: शायद
0: सॉरी।
1: आपको मालूम होगा.
0: नहीं, मुझे नहीं पता है।
1: नीरज जी बोल के बात करते थे,
0: हाँ जी, क्या हुआ उनको?
1: उन्होंने डायलिसिस पे थे तो
0: ओके,
1: एकदम गणेश चौथ के दिन गए तो वापिस ही नहीं आए. अगस्त
0: ओ, मतलब ये अक्टूबर नवंबर की बात है क्या,
1: की बात है ये.
0: लास्ट ईयर? ओके ओके, अच्छा
1: तो बहुत दुख हुआ वही.
0: जी, भगवान उनकी
1: अचानक
0: आत्मा
1: से ही
0: को
1: छोड़
0: शांति
1: दिया.
0: दे। हाँ, हमसे काफ़ी
1: हाँ
0: रेगुलर बात करते रहते थे वो यहाँ पर।
1: जी, हाँ वही.
0: जी, आप ठीक
1: अचानक
0: हैं?
1: मालूम ही नहीं हुआ. जी
0: आप ठीक हैं?
1: जी जी हाँ
0: बिल्कुल, आप अपना ख्याल रखिए एंड बी
1: वही वही.
0: स्ट्रांग।
1: मैं और हमारा बेटा है अभी, तो
0: जी, बिल्कुल अपना ख्याल
1: वो
0: रखिए एंड एकदम
1: है
0: स्ट्रांग
1: ना
0: बन
1: वही
0: के रहिए।
1: काम,
0: हाँ जी
1: वही ऑफिस में करता भी
0: हाँ जी
1: और काम पे उस पे भी जाता है केस हो कुछ तो
0: हाँ
1: भी.
0: हाँ नाइस नाइस
1: जी फिर करेंगे बात. हाँ
0: जी, बिल्कुल ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।
1: जी जी
0: ऑल राइट, तो ये थी हमारी पहली कॉलर एंड अभी मैसेज आया है। कहते हैं कोयल जी नमस्ते भाई, बहुत दिनों के बाद बसवंत जी से बात हो रही है, उनका मैसेज है मासत्यांग शांतिनगर से। कहते हैं सर, सबसे पहले आपको नमस्ते, रेनबो के लिसनर्स को नमस्ते, इट्स लॉन्ग टाइम टू लिसन टू योर म्यूजिक एंड वॉइस, इट्स ऑसम, थैंक यू सो मच सर। न्यू आरजेज आर ट्राइंग देयर बेस्ट, डूइंग गुड, ओल्ड इज गोल्ड, व्हाट आई फील, आफ्टर सम न्यू विल बिकम ओल्ड, देन वी कैन देम कॉल देम गोल्ड, डेफिनेटली। जय श्री कृष्णा। आगे कहते हैं चाय हो या रिश्ते, दोनों में मिठास मायने रखती है, उसका रंग नहीं। नहीं सर, अदरक चाय पत्ती भी मायने रखती है चाय में, तो ऐसे तो बट हाँ, रिश्तों में मिठास मायने रखती है डेफिनेटली। एंड हैव अ गुड डे टू यू एज वेल सर। एंड नाउ वी हैव अनदर कॉलर, लेट्स सी। हेलो
1: हेलो.
0: हेलो
1: बेटा तो करते हैं गलत जेब में. हाँ
0: सर, नाकू तेलुगु अंता बागरादू सर।
1: जेब नहीं कुछ नहीं जेब.
0: ओके सर, हिंदी लो मतलब लेट्स टॉक इन हिंदी और इंग्लिश सर, व्हिच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल इन?
1: हिंदी ले, हिंदी ले जेब.
0: ओके सर, बताइए हिंदी में क्या बोलेंगे आप टॉपिक के बारे में।
1: हाँ कहिए किसके बारे में.
0: हेलो, ओके, आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम.
0: गुड आफ्टरनून मैडम,
1: मैं
0: क्या नाम
1: तन्मय
0: है
1: छोड़
0: आपका?
1: दी, मैं महजबीन बात कर रही हूँ.
0: महजवीन जी, कैसी हैं आप?
1: जी अच्छी हूँ मैं.
0: हाँ
1: बच्ची
0: जी,
1: कने जाके आई शिकागो.
0: हाँ, कहाँ रहती है आपकी बच्ची?
1: शिकागो
0: शिकागो में? क्या बात
1: जाके आई
0: है,
1: मैं, जाके आई.

0: हमको मिस करी बहुत।
1: मैं खुद यहाँ 2 महीने के
0: इंडिया
1: बाद आ रही
0: बोली
1: हूँ।
0: वहां जाके, सड़े इंडिया बोली, इसमें बेस्ट इंडिया बोली।
1: और क्या क्या किया शिकागो में
0: याद
1: भाई?
0: करी, थोड़ा बहुत ही घूमे, मगर बच्ची
1: हाँ
0: कने रहती आई 15 रोज।
1: क्या बात है, क्या
0: मैं
1: बात
0: यही
1: है।
0: मिस करी सब प्रोग्रामों को, आप लोगों को। सर्विस
1: हाँ
0: ने मैं रेमबो पे फोन, आप आए बोल के करी हो।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
0: थोड़ा
1: लगा कैसा आपको शिकागो में, ये तो बताइए, कैसा ठंड थी, गर्मी थी, कैसा था माहौल?
0: थोड़ा ठंडी थोड़ी गर्मी शुरू हुई वहां पे।
1: हाँ, और कोई फ्रेंड्स बनाए नहीं बनाए आपने यूएस वाले?
0: नहीं, बेटी का नहीं, स्थिर रिश्तेदार है हमारे ससुराल, बच्ची का एक ही थे, तो
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: ऐसा मिलने
1: ससुराल
0: पे
1: है
0: आए।
1: उनका,
0: फ्रेंड्स
1: क्या बात।
0: भी यहाँ बने, बोलती हूँ बोली मैं रेमबो पे, तो
1: हाँ
0: फुल मदद करे हिंदू भाई बहने,
1: हाँ जी
0: गुजरात के इधर के सब,
1: हाँ जी
0: बॉटल खोल के देना, बहुत हेल्प करे। मैं बोली, मैं बोलती हूँ रेमबो पे बात करे तो बोलती
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो टॉपिक के बारे में
0: अच्छे
1: कुछ नहीं
0: आप।
1: बोलना चाहेंगे?
0: नहीं, आपसे बात करने करी, क्या है टॉपिक नहीं मालूम, मैं बाहर
1: टॉपिक
0: गई
1: भी
0: थी
1: नहीं
0: अभी,
1: मालूम, क्या बात है क्या बात है। आई
0: वैसे
1: थिंक
0: सुन रही हूँ,
1: आजकल,
0: मैं बीच में काम को गई थी।
1: अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आपने कॉल किया, अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। सो ये थे हमारे अब तक के कॉलर्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, एंड कॉल का आपके इंतज़ार रहेगा, कॉलिंग लाइन्स आर 0402323 0030, 2323-4821 एंड 2970-4715। टॉपिक चल रहा है कि आप अपने घर के बड़ों को लव्ड एंड रिस्पेक्टेड फील कराने के लिए, कि आप उन्हें प्यार दे रहे हैं, आप उन्हें इज्जत दे रहे हैं, ये फील कराने के लिए हमें क्या ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर आपके जहन में हो तो एटलीस्ट एक बात आप शेयर करें। सो एक बात शेयर करने से हम काफ़ी लोग तक बहुत सारी बातें पहुंचा सकते हैं, एंड वी कैन मेक श्योर कि जो घर के बड़े लोग हैं वो लोग रिस्पेक्टेड एंड लव्ड फील करें, बिकॉज बुढ़ापा, आई थिंक आई वुडन्ट से पीपल शुड एक्सेप्ट इट विद ग्रेस, बट बुढ़ापा आते आते इंसान काफ़ी चीज़ों में कमज़ोर हो जाता है, उसके थॉट प्रोसेस में, अपने बल में, अपनी ताकत में, सो उससे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। सो एज अ फैमिली मेम्बर वॉट वी कैन डू इज़, द बेस्ट वी कैन डू इज़ वी कैन गिव देम दैट मेंटल स्ट्रेंथ, दैट सपोर्ट, दैट येस वी आर देयर, वी स्टिल रिस्पेक्ट यू, वी स्टिल लव यू द सेम वे। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज हेलो रेनबो, ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन, एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत, एंड आपके कॉल्स का रहेगा हमें इंतजार।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ని పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

0: ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए उनको, हमारा प्यार मोहब्बत डालना है
1: जी
0: हमको, उनसे मिलते रहना, हमारा वक्त देना जरूरी है हमारे बड़ों के लिए बस।
1: हाँ, मुझे लगा कि शायद
0: हम
1: आपके
0: वक्त
1: बच्चे हैं
0: देंगे तो उनका
1: आसपास।
0: सारी खिदमत हो जाएंगी, वो जो भी बोलेंगे हमको सुनना चाहिए, उनके उनको बार बार सलाम करते रहना चाहिए ताकि उनके हम कांटेक्ट में रहें, उनको मिलके उनको दुआ उनकी दुआ लेती रहनी चाहिए
1: जी
0: और उनको वक्त देना चाहिए, और उस वक्त में हमको जो भी है उनके आज्ञा का पालन या उनके जो बड़ा बुजुर्गी जो बुढ़ापा हो जाता है उसकी कमजोरी का उनको एहसास नहीं होने देना चाहिए।
1: राइट राइट। सो मुझे लगता
0: जी
1: है कि जो सबसे अच्छी बात आपने कही है वक्त, आज की
0: हाँ
1: डेट में मैं देखती हूँ कि लोग इतने बिजी होते हैं कि बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहते। आप दो
0: बस
1: पल
0: वही
1: उनसे बैठ
0: उस
1: के।
0: वजह से सारे बिगाड़ हो जाते हैं।
1: जी, पर
0: मैं
1: मुझे
0: बोला
1: लगा कि
0: सोना
1: शायद
0: चांदी
1: ना
0: पैसे देना तो वो सब दे देते लेकिन वो वक्त नहीं देते,
1: नहीं
0: और
1: देते
0: वो
1: हैं।
0: उस उन चीजों से उन बड़ों का हमारे जो होते हैं उनका दिल नहीं भरता।
1: जी बिल्कुल। मुझे लगा कि आपके बच्चे हैं आसपास, एंड इसलिए आप बोल रहे हैं कि बड़ों को पैसे देना चाहिए, सोना चांदी देना चाहिए, ताकि जब आपके बच्चे बड़े हों तो आपको ये सारी चीजें
0: नहीं, कोई भी नहीं है मेरा बड़ा,
1: अच्छा
0: मेरा तो मैरिज ही नहीं हुआ है अभी, लेकिन सारी चीजों का तजुर्बा हो चुका है,
1: बिल्कुल।
0: बस छोटा हो या बड़ा हो कोई भी हो, दोस्त बाहर का हो या घर का हो, वक्त देना जरूरी है और
1: बिल्कुल
0: कुछ भी साथ में आने वाला है, प्यार मोहब्बत दुआ सलाम यही अपनी प्रॉपर्टी, अच्छे आमाल ही अपनी प्रॉपर्टी है बस।
1: जी बिल्कुल। बहुत बहुत
0: जी
1: शुक्रिया कॉल करने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया प्रीत जी। एक गाने तो अभी तो नए जमाने के चल रहे, अगर हो सके तो एक गाना है प्ले करे तो कर दो आप, नहीं तो कोई बात नहीं, फिल्म का
1: हाँ
0: नाम है कब्जा,
1: कब्जा।
0: हाँ मोहम्मद अजीज की आवाज में है, ऐ मेरे दिल तू हर दम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर।
1: ऐ मेरे दिल तू सबका भला कर, नहीं सॉरी, ऐ मेरे दिल तू दुआ कर, राइट।
0: हाँ ऐ मेरे दिल हर दम ये दुआ कर,
1: एंड
0: या
1: मूवी
0: मेरे
1: का नाम
0: मालिक
1: है
0: तू
1: कब्जा,
0: सबका भला
1: राइट।
0: कर, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज है,
1: हाँ,
0: कब्जा फिल्म का गीत है।
1: ऑल राइट, मैं ढूंढती हूँ, अगर है मेरे पास तो डेफिनेटली प्ले करती हूँ।
0: शुक्रिया और बहुत
1: और
0: दिनों के बाद आए आप, अल्लाह
1: जी
0: आपको भी खुश रखे आबाद रखे, आप भी कुछ बड़ी भागदौड़ में लगे होंगे, सारी दुनिया की कामयाबी मिले आपको यही दुआ करता हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो
0: शुक्रिया,
1: मच
0: अल्लाह
1: कॉल
0: हाफिज़।
1: करने के लिए। जी चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो
0: हेलो स्वागत
1: हेलो
0: मैडम,
1: जी, आपकी आवाज़ थोड़ी
0: हेलो।
1: क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी
0: हाँ आवाज हो रहा है, रहनाम बस स्टैंड में हूँ।
1: हाँ
0: हेलो
1: हाँ जी,
0: हाँ
1: बोलिए।
0: हाँ आपको स्वागत करता हूँ, और आज मेरा फोन निश्चित करने के लिए बहुत आभारी हूँ, और पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा हूँ जो सारा बस प्रधानमंत्री राजेश करे और हमारा देश को बहुत आगे बढ़ाए। हेलो
1: जी, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, अगर पॉसिबल हो तो
0: हाँ ठीक
1: प्लीज़।
0: है ना, थोड़ा थोड़ा बाहर ऐसा थोड़ा बाहर
1: हाँ जी
0: वन में से वर्ड में अभी आवाज आ रहा है। हाँ
1: जी आवाज़ आ रही है पर क्लियर नहीं है, बट आप बोलिए क्या बोल रहे थे। हाँ
0: आज जो कक्षा के सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार, और सबसे तुम्हारा आज जो भी नमस्कार कर रहा हूँ, और सबसे अच्छा कर रहे, और
1: जी
0: आप जो बोले बड़े को इज्जत करना, उम्र वालों को हेल्प करना, अगर आजकल किसको टाइम है, आप बच्चे हैं तो आपका माँ बाप को टाइम देने का टाइम है, आप जॉब करें आपको तो टिफिन खाने का टाइम नहीं, बाहर टिफिन खा रहे,
1: जी
0: आप इधर
1: बिल्कुल
0: तो सास ससुर को भी देने को टाइम नहीं, बेटा भी नौकरी करे बहू भी नौकरी करे,
1: जी
0: उनको सेवा करने का किसको टाइम है,
1: बिल्कुल
0: आप
1: टाइम
0: बोलो
1: नहीं है
0: आपको सबको तो मालूम है,
1: जी
0: मगर टाइम निकालने के लिए होना तो जो गांव में रहते वो लोग करते,
1: जी
0: शहर में किसी को भी नहीं है, क्यों आप मैं जो बोलूँ 100% श्योर से क्या है आप बोलो,
1: जी
0: बस में
1: बिल्कुल
0: आपको टिफिन बनाने का भी टाइम नहीं है, मैं देख रहा हूँ जॉब करने वाले 10-15 लोग कोई भी सब टिफिन दुकान में आके टिफिन लेके खरीद जाते, नहीं तो कुछ लेके जाते बाहर, उनमें खाना बनाने का जो टाइम नहीं मिलता बहू को बेटे को बच्ची को, वो
1: हाँ
0: माँ बाप को क्या देखे उम्र वाले को,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: निकाली बात है मेरे लिए,
1: जी
0: जो देख रहा हूँ दुनिया वही बोल रहा हूँ,
1: जी
0: आगे
1: बिल्कुल
0: आपको मैं सही या गलत आप तक शेयर करना, आपका
1: बिल्कुल
0: फोटो
1: बिल्कुल
0: मुझे
1: सही बोल
0: डालना,
1: रहे हैं सर, बट इतना नाराजगी में मत आइए आप।
0: और नहीं नहीं
1: अब
0: नाराज नहीं हूँ, मुझे जोर है बोल रहा हूँ, और एक बात क्यों,
1: हाँ
0: ये सात पर दुनिया है,
1: हाँ
0: कल
1: हाँ
0: युग सबको पैसा होना और
1: जी
0: सबको बस एंजॉय करना, गाड़ी होना प्लाट होना पैसा होना, सब पैसा में स्वार्थ देखते हैं, माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है कलयुग में, शहर में गांव में
1: हाँ
0: कोई है तो देखते, हेलो,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल जी
0: और ये क्या, और जिसका कोई सहारा नहीं उनको कोई नहीं है, पुत्तल नहीं है जैसा बंजर आवारा पुत्तल जानता मेरा बात, ठीक है आपका अच्छा से सॉन्ग दे दो जो आपको पसंद है, आपको
1: हाँ
0: मालूम है मैं कौन हूँ,
1: हाँ
0: सो मेरे लिए अच्छा सो बहुत दिन का बाद आए इसलिए बहुत

0: গা, তোমার আবার শরীর কাজ যেটা
1: हमारे कॉलर्स सर मुझे लगा कि काफी गुस्से में है हो सकता है कि यू नो सर इज ट्राइंग टू टॉक कि जो वो देख रहे हैं अपने आजू बाजू और कई बार होता है कि हम देख कर नाराज हो जाते हैं बट हाँ क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस आती है लाइफ में जब हम अपने वालों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सो अगर बड़े बुजुर्ग हैं भाई तो आप भी समझने की कोशिश करिए एंड डोंट थिंक कि आपके घर वाले आपको प्यार नहीं करते हैं प्यार सब वैसा ही है इट्स जस्ट कि बड़े होते होते होते जब आप लोग जवान थे और जब हम बच्चे थे तब शायद लाइफ में इतनी भागदौड़ नहीं थी जितनी आज बढ़ चुकी है सो ऑफकोर्स थोड़े से डिफरेंसेस तो आएंगे छोटे आप भी भाई इज्जत देना मत भूलिए अभी सुनते हैं हम अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी लूडो आबाद बर्बाद एंड उसके बाद हम बात करते हैं गाने के बाद अपने कॉलर से स्टे ट्यून्ड दिस इज हेलो रेनबो ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9 रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन एंड मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रीत स्टे ट्यून्ड

0: सेल्फिशनेस भी है. बोलते मैं अगर मेरा बच्चा अगर देख लिया हमारे पिताजी हमारा दादा तो करा, मैं भी कर लिया ही करना. अपन बोलना नहीं चाहिए उनको, वो उसके माइंड में कैसा तो भी वो आ जाता, वो अडॉप्ट हो जाता वो कैसा तो. ये तो मैं मानता हूँ मैं प्रीत जी. और एक अगर हो सके तो एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए.
1: जी कौन सा?
0: चांदनी में से रंग भरे बादल से.
1: रंग भरे बादल से, ठीक है. हाँ जी.
0: Have a great day.
1: You too, sir. Thank you so much. Bye bye. And the next caller, call got disconnected. Hello.
2: Namaste,
1: Namaste sir. आपका नाम?
2: हिंदुस्तानी ग्रुप से हैदराबाद से बात कर रहा हूँ.
1: क्या बात है सर. सो कैसे हैं आप एंड क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के बारे में?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही का करम है, फजल है.
1: हाँ जी.
2: हेड ऑफ.
1: हाँ सर, अपन ऑन एयर है, आप बात करना चालू कर सकते हैं.
2: जी
1: हम ऑन एयर है, आप टॉपिक के बारे में क्या बोलेंगे सर?
2: जी हेड ऑफ फैमिली हूँ मैं. मेरे बच्चे जिस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे दिल से ही दुआ निकलती है. बल्कि मैं अपने बच्चों को अपने माँ बाप में जैसा खिदमत करता था, मतलब ये हुआ कि उनको होमवर्क दे रहा था मैं, आज वही मेरे को लिए प्रेरित हो रहा है.
1: जी जी.
2: और मेरे को छोटे छोटे ख्याल से मेरे को बहुत अच्छा रखते हैं मेरे बच्चे.
1: क्या बात है.
2: ऐसा हो या कुछ हो पहले ख्याल कर देते हैं. और चप्पल वगैरह भी खुद घर के बच्चे खैरा तो पहने रख देते हैं, कभी कभी जूता तो हाथ से पहनाते हैं. तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा दिखता है. बच्चे जब अपने आप को एक दूसरे को मैं करता हूँ बोले तो बहुत अच्छा दिखता है. और कुछ भी लाए तो पहले मेरे ख्याल का करके खाने की चीज ला के रख देते हैं पहले बाबा को दे दो, और बाबा खाए बोल के पूछ के फिर अपन बैठते हैं खाने के लिए.
1: क्या बात है, मतलब खुद किस्मत है.
2: जुम्मे के दिन तो बहुत अच्छा दिन दिखता है हमारे पास, क्योंकि बच्चे खुद ऐसा खुश मिजाज माहौल बना देते घर में, ये जीने की चाह और बढ़ जाती है.
1: क्या बात है बस यही तो चाहिए सर. दो वक्त की रोटी और खाना भले ही ना मिले, बट इतना सम्मान और प्यार मिल जाए, जिंदगी बहुत अच्छी कट जाती है.
2: थोड़ा सा गाना गुनगुनाना चाह रहा हूँ.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. ये गाना अगर लगा दी तो करूंगा मुझ पर.
1: क्या बात है सर, बहुत प्यारा गाया आपने. ये कौन सी मूवी से गाना है?
2: ये इनका नाम तो मुझे कुछ याद नहीं है.
1: मैं चेक करती हूँ सर. हाँ चेक करती हूँ. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. एंड द नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
3: हेलो. नमस्कार जी.
1: नमस्कार जी. आपका नाम?
3: मेरा नाम बोले प्रभाकर राव.
1: जी प्रभाकर जी, तो क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के बारे में आप?
3: तो एक ही बात है, मेरा बड़े लोगों को कितना रेस्पेक्ट दिया है तो अपने को भगवान ऊपर वाले उतना रेस्पेक्ट दिएगा.
1: जी बिल्कुल.
3: तो अपन उन लोगों को सेवा करें तो अपने बच्चे अपने को सेवा करते.
1: जी.
3: अगर नहीं है अपने बच्चे भी अपने को नहीं देखते बड़े होने के बाद में.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
3: ये तो कभी कोई भी हो याद रख लेना, बड़े लोगों को कोई भी हो, उन्हें कितने सुस्त में हो ना डिसीज में हो ना पैदल चलने को नहीं आ रही, उसको सेवा करना है. बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल सर.
3: मरे तक करना है. वो आखिरी दिन में वही होगा.
1: जी बिल्कुल.
3: बोले प्रभाकर, नमस्कार.
1: थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ये सर मस्त तूफान की तरह है, अपने दो शब्द कहे एंड चले गए. हाउ स्वीट ऑफ यू सर, कितने प्यार से कहा आपने. एंड जैसे एक सर कह रहे थे ना कि हम चाहेंगे कि जो हम अपने माँ बाप के लिए करते हैं हमारे बच्चे भी देखें. जस्ट इमेजिन जो लोग हम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते हैं एंड हम इल ट्रीट करते हैं कई बार अपने पेरेंट्स को, एंड वही हमारे बच्चे अगर देखते हैं तो फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. सो यस, मेक श्योर कि जैसा बुढ़ापा जैसा फ्यूचर आप चाहेंगे, आप अपने अभी बूढ़ों को वैसा ही फ्यूचर देने की कोशिश करें, वैसी ही लाइफ देने की कोशिश करें. बने रहे हमारे साथ, चलते हैं गाने की तरफ, उसके बाद करते हैं हमारे कॉलर से बात एक छोटे से ब्रेक के बाद. एंड अभी गाना आ रहा है ए मेरे दिल, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में. एंड रंग भरे बादल में मुझे गाना मेरे पास तो नहीं मिला. एंड देन स्टे ट्यून्ड, वी विल ट्राई टू प्ले द बेस्ट ऑफ द म्यूजिक हियर. दिस इज हेलो रेनबो ओनली ऑन 101.9 FM.

0: सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर्स की तरफ। हेलो,
1: हेलो,
0: यस
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम?
1: ऑनलाइन में मैडम,
0: यस सर
1: ओम शांति ही, नमस्कार मंडी।
0: जी,
1: मेरा
0: आपका
1: नाम
0: भी
1: पोल के पोल सिटी मेहर बाबा जुबली से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी सर।
1: जी आप अच्छे से आज कह रहा था, अच्छे से बात करता जी आपका, आप बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू। टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे
1: टॉपिक
0: सर?
1: के बारे में भी बोल तो मैं भी सीनियर सिटीजन नहीं मैडम, जूनियर सिटीजन में।
0: कैसे एक्सप्लेन करेंगे जूनियर
1: मतलब
0: सिटीजन
1: मेरे
0: को?
1: को 62 हो गया, 63 में चल रहा मैडम,
0: अच्छा, 2 साल में
1: इसलिए
0: सीनियर
1: जूनियर
0: सिटीजन हो
1: सिटीजन
0: जाएंगे।
1: मैडम।
0: हाँ जी
1: बड़े लोगों को बोले तो मैडम एक आदमी नहीं चलता मैडम, रोड क्रॉस करने को नहीं होता मैडम,
0: हाँ।
1: एड्रेस

0: అడ్రస్ పూస్తే నయమాలం అవుతా మేడం, ఇందులోకి తొడ హెల్ప్ కరణా మేడం, రోడ్ క్రాస్ కరవానా, అడ్రస్ వచ్చేసి తొడ లేకే జాకే బతానా మేడం, ఇందులోకి ఖుషి ఖుషి అవుతా మేడం.
1: జీ జీ బిల్కుల్ బిల్కుల్.
0: జబ్ ఇందులోకి బడేలోకి క్యా బోల్తే భగవాన్ కా జైసా మేరకు రాస్తా బతాయా అచ్చా రహో బోల్కే ఇందులోకి దోవా దేతే మేడం.
1: బిల్కుల్ బిల్కుల్ సార్. ఆల్ రైట్ సార్.
0: అవరి క్యా అవుతా బోల్తో బడే వాళ్ళకు సేవ కరణా అచ్చేసే బాత్ కన్నా రెస్పెక్ట్ దేనా మేడం, అచ్చేసే రహనా మేడం. అప్పన పోలేటి ప్రభాకర్ రావు జీ బోలేనా సార్ మేడం, అప్పన బడేలోకు అప్పన సేవా కయితే అప్పన అచ్చేసైతే అప్పనకు భీ అప్పన బచ్చే అచ్చేసే దిక్తే ఠీక్ కే రాతా, అప్పనకు భీ హాస్టల్ మే నై దాల్చే మేడం.
1: జీ జీ బిల్కుల్ బిల్కుల్ సార్.
0: పోలేలోకు హాస్టల్ మే ఆజకల్ పప్పలోకు హాస్టల్ మే దాల్ జరే ఏ కామ్ నై పోతా మేడం, అప్పన అచ్చే రాతే అప్పనకు భీ అచ్చే భగవాన్ దిక్తే మేడం.
1: జీ బిల్కుల్
0: అచ్చే బాత్ మేడం.
1: ఓకే సార్
0: మేడం, పోల్ సిటీ మెహర్ బాబా థాంక్యూ.
1: థాంక్యూ సో మచ్ సార్. And the next caller, hello.
2: Hello, good morning. Good afternoon, madam.
1: Good afternoon, sir. Aapka naam?
2: Main Mohammad Afzal Gokula Court se bol raha hoon.
1: Haan ji. So bataiye, kya kehna chahenge topic?
2: 11 baje se 12 baje tak jo aap gaane sunaye, bahut pyare gaane the.
1: Thank you, sir. Aur abhi achhe nahi lag rahe.
2: Sabhi shrotaon ko mera salaam, namaskar.
1: Ji, aapko bhi.
2: Sher Khan sahab ko bhi mera salaam.
1: Ji.
2: Bada pyara gaana unhone lagaya Mohammad Aziz ki awaaz mein, wo mere ko bhi pasand tha.
1: Kya baat hai? Haan ji.
2: तो खान साहब को भी सलाम. सीनियर सिटीजन को जो है अपने घर में जो सीनियर सिटीजन है वो एक चलती फिरती किताब है, हिस्ट्री है वो. उनके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस रहते
1: जी,
2: बहुत तजुर्बे रहते उनके पास
1: जी,
2: उनसे तजुर्बा अपन हासिल करना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए, उनको मुनासिब समझे, उनका सूटेबल जहाँ भी जगह है जाने के लिए उनको लेके जाना चाहिए.
1: जी जी बिल्कुल.
2: और उनका खाने पीने का ख्याल करना, उनका एंटरटेनमेंट का ख्याल करना, उनके दवाएं वगैरह जो है उनको टाइम पे ला के देना, उनके पास बैठना, उनके उनको टाइम देना, तो बहुत खुश होते, उनकी उम्र बढ़ जाती.
1: जी
2: अभी जो एक भाई साहब बोले मेहर बाबा, उनको जो है अगर रोड पे कहीं दिखे तो उनकी जरा रोड की रास करनी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है.
1: जी
2: कहीं चला आदमी अगर कोई सीनियर सिटीजन देखा तो उसको मदद करना चाहिए, जरूरी है, उसको मदद की जरूरत है.
1: बिल्कुल बिल्कुल सर.
2: हाँ तो ये काम अगर करेंगे अपन तो वो भी खुश होंगे, अल्लाह ताला भी खुश होंगे.
1: जी बिल्कुल सर. बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए. हाँ जी सर,
2: शुक्रिया.
1: थैंक यू थैंक यू. एंड द लास्ट कॉलर, हेलो.
3: हेलो
1: हेलो. हाँ जी मैडम, अब थोड़ा सा रेडियो का वॉल्यूम हाँ जी कम हो चुका है, बताइए तो क्या बोलना चाहेंगे टॉपिक के बारे में.
3: आज देखिए, आज का तो टॉपिक अपने से पहले की तरह बहुत अच्छा टॉपिक लिया है.
1: थैंक यू मैडम
3: जी. मैं यापराल से कीर्ति लक्ष्मी बोल रही हूँ.
1: क्या बात है.
3: और जी आपको सबसे पहले जैसे अन्य श्रोताओं ने भी कहा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते मैं कहूंगी कि बचपन से ही बच्चों में आदत डालनी चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
3: मैं हमेशा क्लास में जब जाती थी बच्चों से जरूर एक दो बात पूछती थी, आपने अपने मम्मी पापा की क्या आज मदद की, आपने दादाजी की क्या मदद की, नानी की क्या मदद की. तो बचपन से ही बच्चों में आदत डालनी चाहिए ताकि वे आगे चलकर बड़ों का सम्मान करें, उनको खुश रखने का प्रयास करें.
1: जी बिल्कुल मैडम,
3: बहुत जरूरी है. और हम अपने देश पर इसीलिए तो गर्व करते हैं
1: जी.
3: कि हमारे देश की सभ्यता, हमारी जो परंपरा है बड़ों का सम्मान करना, बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए और हमें लगातार इसकी आदत डालनी पड़ेगी ताकि बड़ों का सम्मान होता रहे.
1: जी
3: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए मैडम आपका.
3: धन्यवाद जी, धन्यवाद.
1: हाँ जी
3: बहुत अच्छा लगा. और आप पुराने गाने जब सुनाती हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलता है.
1: क्या बात है.
3: पुराने गाने हम लोग सुनना चाहते हैं.
1: जी बिल्कुल.
3: एक बार संगीतकार नौशाद साहब ने कहा था कि नए गानों से पैर की धड़ पैर हिलते हैं, पुराने गानों से दिल की धड़कनें बढ़ती हैं.
1: क्या बात है क्या बात है.
3: तो हमें कितना अंतर है. तो आज भी पुराने गाने सुनते हैं तो दिल की धड़कनें तो बढ़ती हैं.
1: क्या बात है. ऐसे ही आप लोगों का दिल धड़कता रहे एंड खुश रहे आप लोग. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मैडम. थैंक यू
3: थैंक यू सो मच.
1: तो चलिए, बहुत ही प्यारा कॉल था ये लास्ट वाला, और जैसे मैडम के स्लैंग में बिल्कुल समझ में आता है कि शी इज़ अ टीचर, एंड एक टीचर एक गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, एंड जब एक गुरु ही कह रहा है कि भाई बचपन से ही सारी बातें सिखानी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार होता है कि घर में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, तो बड़े जितने भी हैं घर में

समझने की कोशिश करें अपने छोटों को, गलतियाँ छोटों से होती है, माफ़ करिए, प्यार बना के रखिए एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इसके साथ मैं लेती हूँ आज के लिए अलविदा, मिलते हैं बहुत जल्द विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू शो। एंड दिस वॉज हेलो रेनबो विथ मी आरजे प्रीत, ओनली ऑन ऑल इंडिया रेडियो रेनबो FM 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन एंड बाय।

0: आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर रिमझिम हैदराबाद प्रोग्राम पेश कर रही थी जी नंदिनी। चंद ही लम्हों में नया रंग प्रोग्राम पेश होगा।
1: FM रेनबो 101.9
0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है FM 101.9 MHz पर और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। समाइन स्टूडियोज की घड़ी में इस वक्त 9:30 हो चुके हैं। अब वक्त है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का। प्रोग्राम नए रंग का आगाज हो समाइन, आइए उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। दोस्तों, मेहनत और जुस्तजू वो दो चिराग हैं जो इंसान के ख्वाबों की तारीक राहों को

को रोशन करते हैं। ख्वाब सिर्फ देखने से हकीकत नहीं बनते, बल्कि जब इंसान अपनी तवानाई, सब्र और लगन को उन ख्वाबों के पीछे लगा देता है, तब वो ख्वाब हकीकत का रूप धारते हैं। मेहनत इंसान को जमीन से आसमान तक ले जाती है, और जुस्तजू उस सफर को जारी रखने की कुव्वत देती है। ख्वाब एक बीज की मानिंद है, लेकिन अगर अगर उन्हें मेहनत की मिट्टी और जुस्तजू के पानी ना मिले, तो वो कभी फलदार दरख्त नहीं बन सकते। ख्वाब हकीकत में ढल जाते हैं जब मेहनत के चिराग जल जाते हैं। ख्वाब हकीकत में ढल जाते हैं जब मेहनत के चिराग जल जाते हैं। जुस्तजू का सफर थमता नहीं, हौसले से रास्ते बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही फलसफा जिंदगी का असल हुस्न है कि ख्वाब देखना आसान है, मगर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और जुस्तजू लाजिम है। इसी मैसेज के साथ, इसी पैगाम के साथ सामाइन, आइए अब शुरुआत करते हैं नए रंग प्रोग्राम की।

नए रंग सुनने वाले सभी सामाइन की खिदमत में हमारा पुरखलूस आदाब। नए रंग प्रोग्राम का आगाज होगा हरफे ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश है जनाब एम ए हाई साहब की।

0: बज़्म नज़्म इस सिलसिले के तहत जनाब सैयद समीउल्लाह से उनका अपना कलाम सुनिएगा। इसके अलावा गीत सुरीले गाते जा इस सिलसिले के तहत मेरी पसंद के कुछ फिल्मी नगमे पेश किए जाएंगे और आखिर में पयाम शब के साथ आज के नैरंग के प्रोग्रामों का इख्तिताम होगा। तो आइए सामाइन प्रोग्राम नैरंग का आगाज करते हैं और सुनते हैं हरफ ताबिंदा। तहरीर व पेशकश है जनाब एम ए हाई साहब की।
1: समईन, खालिक कायनात ने हर इंसान को मुख्तलिफ जहन और खसूसियात के साथ पैदा किया है। यही वजह है कि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते और न सलाहियत के लिहाज से एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। लाख सूरत एक जैसी हो, ज़ाहरी तौर पर शक्लें मिलती जुलती हों, हर इंसान की इज्जत और इसके एहतराम की तालीम अलग अलग होती है। कहा गया है कि हर इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए, चाहे कोई कितना ही मामूली या आम इंसान क्यों ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि बेहतरीन इंसान वो है जो एक दूसरे का खैरख्वाह और हमदर्द हो। लेकिन बेहतरीन इंसान बनने से पहले बच्चों की अच्छी तरबियत पर भी तवज्जो देना बेहद ज़रूरी होता है। इस दौर में तरबियत पर कम और तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, इससे फ़ायदे के बजाय खसारा होने का खदशा रहता है। पढ़ाई के महंगे अखराजात की फ़िक्र और बेहतर नतीजे की उम्मीद करते हुए अक्सर वालिदैन अपने ख्यालात बच्चों पर थोपने की कोशिश ही नहीं बल्कि थोपते हैं। बच्चों के जहनों पर बेशतर वालिदैन के फ़ैसले सादर कर देने के ख्वाहिश से बच्चों की सलाहियतें उभर नहीं पाती। बच्चों की आदत या खसूसियात और जहानत को नज़रअंदाज करके उन्हें लायक व फायख बनाने का अमल कतई दुरुस्त नहीं। ऐसा करने से बच्चों का जहन माउफ हो जाता है, इसलिए ऐसा करने ना करने की वालिदैन को सलाह दी जाती है।

हसद जिद शान हर धर्मी तकबुर ये रिश्तेदार हैं सारे अना के, ये रिश्तेदार हैं सारे अना के। मुलाहज़ा कीजिए एक मतला और एक शेर के, दोस्ती के पेड़ बाकी हैं मगर साया नहीं, दोस्ती के पेड़ बाकी हैं मगर सा

के पेड़ बाकी हैं मगर साया नहीं, उन पाउल्फत और मुरव्वत का कोई पत्ता नहीं, उन पाउल्फत और मुरव्वत का कोई पत्ता नहीं। मसलहत की गर्द से मैले हैं सारे आईने, मसलहत की शेर देखेगा सामाइन के, मसलहत की गर्द से मैले हैं सारे आईने, इसलिए बेदाग कोई आजकल चेहरा नहीं, इसलिए बेदाग कोई आजकल चेहरा नहीं। और एक एक मतला एक शेर जो सर कटा के भी दस्तार को बचाते हैं, जो सर कटा के भी दस्तार को बचाते हैं, वही मकाम ज़माने में ऊंचा पाते हैं, वही मकाम ज़माने में ऊंचा पाते हैं। कमाल इससे बड़ा है कोई तो बतलाए, कमाल इससे बड़ा है कोई तो बतलाए, हम इस ज़माने में रोटी हलाल खाते हैं। कमाल इससे बड़ा है कोई तो बतलाए, हम इस ज़माने में रोटी हलाल खाते हैं। जैसा कि सामाइन मतले और कुछ अशार है आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ। मुलाहज़ा कीजिए कि मकाम हम जो ज़माने में कुछ बनाने लगे, मकाम हम जो ज़माने में कुछ बनाने लगे, तरह तरह से हमें लोग आजमाने लगे, तरह तरह से हमें लोग आजमाने लगे, जो आसमानों पे अपना दिमाग रखते थे, जो आसमानों पे अपना दिमाग रखते थे, संभल के चलने ज़मीं पर उन्हें ज़माने लगे। ये इस कबील का आखिरी शेर है कि कुरेदा जब भी गया इनको फ़न के नाखून से, कुरेदा जब भी गया इनको फ़न के नाखून से, अदब के ज़ख्म समी और मुस्कुराने लगे। बल्कि ये इसको मैं मख्ता कहना चाहिए था, अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरेदा जब भी गया इनको फ़न के नाखून से, अदब के ज़ख्म समी और मुस्कुराने लगे। कुछ और आपकी खिदमत में गज़ल और कुछ अशार पेश करना चाहूँगा, बल्कि यूँ कहूँ कि ख़ता है, मुलाहज़ा कीजिए, बल्कि दो ख़तात पेश कर रहा हूँ। खातिल बना है और उसे इस पे नाज है, खातिल बना है और उसे इस पे नाज है, ज़ालिम की हर सदा में तआसुब का साज है। खातिल बना है और उसे इस पे नाज है, ज़ालिम की हर सदा में तआसुब का साज है। ज़ालिम को ढील देता है अल्लाह भी क्या करें, सच है हराम ज़ादे की रस्सी दराज है। ये मिसरा मोहतरम शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है, उन्होंने कहा था कि सच है हराम ज़ादे की रस्सी दराज है, उसी पे मैंने तज़मीन की है। क़ातिल बना है और उसे इस पे नाज है, ज़ालिम की हर सदा में तआसुब का साज है। ज़ालिम को ढील देता है अल्लाह भी क्या करें, सच है हराम ज़ादे की रस्सी दराज है। मुलाहज़ा कीजिए और एक क़ता के, मुनफ़रत करने वालों से मोहब्बत छीन लेता है, और नफ़रत करने वालों से मोहब्बत छीन लेता है, ख़यानत करने वालों से अमानत छीन लेता है। यही पैगाम है अपना हर एक ज़ालिम हुकूमत को, खुदा ज़ालिम के हाथों से हुकूमत छीन लेता है। सामिन मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, बल्कि एक गज़ल पे मैं ख़त्म करूँगा अपनी बात। मुलाहज़ा कीजिए, मतला है कि आज़ाद हूँ मगर मैं रिवाजों में क़ैद हूँ, आज़ाद हूँ मगर मैं रिवाजों में क़ैद हूँ, सच कह रहा हूँ झूठे उसूलों में क़ैद हूँ। दुनिया तो देखती है उजालों में ही मुझे, दुनिया तो देखती है उजालों में ही मुझे, लेकिन मैं ज़िंदगी के अंधेरों में क़ैद हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी के अंधेरों में क़ैद हूँ। सच बोलना गुनाह है तो मैं हूँ गुनाहगार, मैं ऐसे बेशुमार गुनाहों में क़ैद हूँ। ऐ मौत तुझको देने मेरे पास कुछ नहीं, ऐ मौत तुझको देने मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो हयात की अभी सांसों में क़ैद हूँ। इंसानियत के रिश्ते को सच मानता हूँ मैं, इंसानियत के रिश्ते को सच मानता हूँ मैं, फिर क्यों मैं ज़ात पात के रिश्तों में क़ैद हूँ। मोहतरम सामिन इकराम, ये नैरंग प्रोग्राम में आज के कलाम शायर बाज़ुमान शायर में समीउल्लाह हुसैनी समी यानी कि मैं अपना कलाम आपके हुजूर पेश कर रहा था। अब इजाज़त दीजिए, शब बख़ैर। मोहतरम सामिन,
نیرنگ کے سامعین

तो चलिए इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, मोहब्बत में जुदाई सिर्फ जिस्मानी होती है, दिलों की खुरबत कभी खत्म नहीं होती। एक नज़र का इंतज़ार ऐसा है जैसे दिल के अंदर एक चिराग जलता रहे, जो हर लम्हा उम्मीद और वसल की दुआ करता है। ये इंतज़ार इंसान को याद दिलाता है कि मोहब्बत का रिश्ता वक्त और फासले से आज़ाद है। यूं कहा जा सकता है कि मोहब्बत का असल कमाल यही है, दूरी के बावजूद दिल में खुर्बत का एहसास और एक नज़र को उसका इंतज़ार, यही मोहब्बत की लज्जत है।

किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ये थे गीत के बोल, और इस गीत को गाया था भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले ने। फिल्म थी एतबार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नारंग प्रोग्राम और आपने ट्यून किया है FM 101.9 MHz। हमें आप सुन सकते हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। प्रोग्राम नारंग में सुरीले गीतों का सफर जारी है। प्रोग्राम है गीत सुरीले गाते जा। दोस्तों, जब दिल किसी एक शख्स से जुड़ जाए तो उम्मीद भी उसी से वाबस्ता रहती है और इंतज़ार भी उसी का होता है, क्योंकि मोहब्बत का मरकज और महवर वही होता है। मोहब्बत में दिल किसी और की तरफ नहीं देखता। वो एक ही चेहरा, एक ही नज़र, एक ही एहसास को अपनी ज़िंदगी का सहारा बना लेता है। इसीलिए जुदाई के लम्हों में भी उम्मीद उसी की रहती है और इंतज़ार की घड़ियां भी उसी के नाम पर गुजरती हैं। यही मोहब्बत का कमाल है कि दिल को एक ही शख्स में अपनी कायनात नजर आती है। उसी की उम्मीद, उसी का इंतजार होता है।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में दीवाना फिल्म से लिया गया गीत आपने सुना। नैरंग प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं सुरीले गीतों का प्रोग्राम, गीत सुरीले गाते जा। ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर हर शब 9:30 पर। दोस्तों, जैसे कली को फूल बनने के लिए वक्त और इंतजार की जरूरत होती है, वैसे ही मोहब्बत करने वालों के दिल भी एक दूसरे से मिलने के लम्हे के लिए तड़पते हैं। ये इंतजार मोहब्बत की सच्चाई और उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। मोहब्बत का सफर कली से फूल बनने जैसा है। कली सब्र करती है, मौसम का इंतजार करती है और फिर अपनी खुशबू से दुनिया को महका देती है। उसी तरह मोहब्बत करने वाले जुदाई के लम्हों में सब्र करते हैं और एक दूसरे से मिलने की उम्मीद में अपनी जिंदगी को रोशन रखते हैं। कली को फूल बनने का इंतजार है, कली को फूल बनने का इंतजार है, दिल को महबूब से मिलने का खरार है। जी हाँ दोस्तों, यही मोहब्बत का हुस्न है। इंतजार के बावजूद दिल में उम्मीद बाकी रहती है और वही उम्मीद मोहब्बत को जिंदा रखती है।

आए दिन बहार के, इस फिल्म से लिया गया नगमा आपने सुना, और इस नगमे को गाया था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। नए रंग में गीत सुरीले गाते जा, इस सिलसिले के तहत सुरीले नगमे पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, मोहब्बत में जब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं और जब वो घड़ी आ जाती है जिसका शिद्दत से इंतज़ार हो, तो दिल जैसे बहार में खिल उठता है। ये लम्हा उम्मीद के चिराग को हकीकत की रोशनी में बदल देता है। इंतज़ार की घड़ियाँ अक्सर सब्र और दुआ से गुजरती हैं, लेकिन जब वो घड़ी सामने आती है तो दिल की धड़कनें खुशी के नगमे गाने लगती हैं। ये लम्हा ऐसा होता है जैसे खजां के बाद बहार आ जाए, ये जैसे अंधेरे के बाद रोशनी दिल को छू ले। यही मोहब्बत और ज़िंदगी का हुस्न है कि इंतज़ार के बाद आने वाला लम्हा दिल को बेहद खुशी और सुकून दे जाता है।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म डॉन से लिया गया गीत आपने सुना। आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz आपने ट्यून किया है और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हर शब इन्हीं मीटर्स पर, इन्हीं मेगाहर्ट्ज पर आप सुन सकते हैं उर्दू प्रोग्राम नयरंग। नयरंग प्रोग्राम में नित नए प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं, जिसमें से एक है गीत सुरीले गाते जा, सुरीले गीतों का प्रोग्राम, और वही सिलसिला जारी है।
1: FM रेनबो 101.9।
0: प्यार करने वालों का आजकल इंतज़ार यही होता है कि वो आए और अपने साथ प्यार की खुशबू लेकर दिल को सुकून दे।

ये इंतज़ार दरअसल दिल की गहराइयों में छुपी उम्मीद है जो हर लम्हा महबूब की आमद की दुआ करती है। इंतज़ार की घड़ियाँ कभी आसान नहीं होती, मगर मोहब्बत इन्हें सहने की ताकत देती है। दिल हर आहट पर चौंक उठता है, हर लम्हा ये सोचता है कि शायद वो आ जाए और अपने एहसास से जुदाई की थकन को मिटा दे। दोस्तों, मोहब्बत में यही कहा जा सकता है कि मोहब्बत का जादू है। दूरी के बावजूद दिल में उम्मीद बाकी रहती है और वही उम्मीद इंतज़ार को खुशबू में बदल देती है।

अनुपमा देशपांडे और उनके साथियों की आवाज़ों में सैलाब फिल्म से लिया गया गीत आपने अभी सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर। दोस्तों, सुरीले गीतों का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम है नए रंग। मोहब्बत में बेकरार आंखें हर लम्हा उसी की झलक ढूंढती हैं और तन्हा रातें उसके ख्याल से रोशन रहती हैं। ये इंतज़ार दरअसल दिल की तड़प और मोहब्बत की सच्चाई का आईना है। रात की खामोशी में जब दिल तन्हा होता है तो हर लम्हा महबूब की याद दिल को घेर लेती है। आंखें बेकरार रहती हैं कि शायद वो लम्हा आ जाए जब दीदार

यार नसीब हो। ये कैफियत मोहब्बत की सबसे खूबसूरत और सबसे मुश्किल आजमाइश है। बेकरार आंखें उसी को ढूंढती हैं, बेकरार आंखें उसी को ढूंढती हैं, तन्हा रातें उसको सोचती हैं। मोहब्बत का चिराग बुझता नहीं कभी, उम्मीद की लौ उसी से जुड़ती हैं। मोहब्बत में यूं कहा जा सकता है कि मोहब्बत का असल हुस्न यही है, दिल की बेकरारी और रातों की तन्हाई। दिल की बेकरारी और रातों की तन्हाई भी उसी के इंतज़ार को इबादत बना देती है। इंतज़ार उसी का, बेकरारी उसी की,

तेरा इंतजार। इस फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और नायरंग में सुरीले गीतों का सफर जारी है। प्रोग्राम है गीत सुरीले गाते जा। दोस्तों, मोहब्बत में उम्मीद की शमाएं जलाना दरअसल दिल की दुआ और सब्र की अलामत है। जब इंसान अपने महबूब के इंतज़ार में उम्मीद को ज़िंदा रखता है तो वो अंधेरों में भी रोशनी महसूस करता है। मोहब्बत का इंतज़ार ऐसा है जैसे रात की तारीकी में चिराग जलाना। हर लम्हा दिल ये सोचता है कि वो आएगा, और ये शम्माएं उसकी आमद की खुशबू को पहले से ही महसूस करती हैं। ये कैफियत मोहब्बत को इबादत बना देती है, जहां हर लम्हा दुआ और उम्मीद का सफ़र जारी रहता है। यूं कहा जा सकता है कि मोहब्बत का असल हुस्न यही है कि अंधेरों में भी उम्मीद की शमाएं जलती रहें और दिल उसके इंतज़ार में रोशन रहे।

0: बेवफा सनम फिल्म का नगमा आपने सुना। इस गीत को गाया था अभिजीत ने।
1: FM रेनबो 101.9 FM रेनबो 101.9।
0: दोस्तों, मोहब्बत में जब दिल उसकी आमद का मुंतजिर होता है तो बहार भी जैसे उसके साथ आने की आरजू करती है। ये कैफियत बताती है कि मोहब्बत सिर्फ दिलों को नहीं बल्कि कायनात को भी रोशन कर देती है। इंतजार की घड़ियां जब तवील हो जाएं तो दिल हर लम्हा दुआ करता है कि वो आए और जिंदगी को खुशबू से भर दे। प्यार की आमद भी उसी के इंतजार की अलामत बन जाती है। जैसे फूल खिलने से पहले महबूब की मुस्कुराहट का पैगाम दे रहे हों। यूं कहा जा सकता है कि महबूब का इंतजार सिर्फ दिल की कैफियत नहीं बल्कि मौसमों की जुबान भी है। बहार भी उसी के आने की मुंतजिर रहती है।

0: FM Rainbow 101.9. FM Rainbow 101.9.
1: दोस्तों, मोहब्बत में इंतजार के बाद जब महबूब की आमद होती है तो दिल की जमीन पर जैसे बहार उतर आती है। सब्र और तड़प के बाद वो लम्हा ऐसा लगता है जैसे खजां के बाद रंगीन फूल खिल गए हों, या जैसे खुश्क शाखों पर अचानक खुशबू बरसने लगे। शदीद इंतज़ार के बाद महबूब की मौजूदगी दिल को सुकून और ज़िंदगी को ताज़गी दे देती है। ये लम्हा सिर्फ मुलाकात नहीं होता बल्कि एक नए मौसम की आमद जैसा होता है। मोहब्बत का मौसम, खुशबू का मौसम, बहार का मौसम। शिद्दत इंतज़ार के बाद वो आता है। शिद्दत इंतज़ार के बाद जब वो आता है दिल की ज़मीन पर बहार सा छा जाता है। खजां के साए मिट जाते हैं पल भर में। मोहब्बत का रंग हर सिमत छा जाता है। यही मोहब्बत का जादू है। इंतज़ार की तपिश के बाद महबूब की आमद दिल को बहार की तरह रोशन कर देती है।

राजकुमार फिल्म से लिया गया नगमा आपने सुना, और इस नगमे को गाया था लता मंगेशकर ने। दोस्तों, इसी नगमे के साथ नैरंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाते जा का सफर अब यहीं पर रुकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी गीत सुरीले गीतों के प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुनवाए गए आपको पसंद आए होंगे, और जितनी बातें मोहब्बत के मुताल्लिक सुरीले गीतों के प्रोग्राम में आपको बताई गईं

0: आपने ज़रूर पसंद की होंगी। यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा, आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर नायरंग प्रोग्राम में, जो कि पेश किया जाता है हर शब 9:30 पर। हमारी बताई गई बातों का खुलासा यही है सामाइन, कि मेहनत से ख्वाब हकीकत में ढलते हैं, मेहनत से ख्वाब हकीकत में ढलते हैं, मोहब्बत में दिल हमेशा जुड़ते हैं, उम्मीद की शमाएं अंधेरों को मिटा देती हैं, उम्मीद की शमाएं अंधेरों को मिटा देती हैं, इंतज़ार की घड़ियां बहार बन जाती हैं। अब आइए सुनते हैं सामाइन नायरंग प्रोग्राम के आखिर में पयाम शब। तहरीर पेशकश है जनाब सैयद नदीम अख्तर जैदी की।
1: जहालत इल्म की कमी और लाइल्मी को कहते हैं। जब इंसान इल्म और शऊर से दूर हो जाता है तो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। जहालत न सिर्फ इंसान की तरक्की में रुकावट बनती है, बल्कि माशरे में भी कई मसाइल पैदा करती है। इल्म इंसान को रोशनी देता है और इसे बेहतर फैसले करने की सलाहियत बख्शता है, जबकि जहालत इंसान को अंधेरे में रखती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें, शऊर को बढ़ाएं और जहालत से दूर रहने की कोशिश करें। इल्म ही वो ताकत है जो इंसान और माशरे को तरक्की की राह पर गामजन करती है।
0: पयामे शब आपने सुना। तहरीर और पेशकश थी जनाब सैयद नदीम अख्तर जैदी की। सामाइन, पयामे शब के साथ ही आज का उर्दू प्रोग्राम नायरंग अब अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी यहीं पर, यानी आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर कल शब 9:30 पर। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शब बखैर।

0: चंद ही लम्हों में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाक

0: क्या की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labor migration, digital technology and defense, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
0: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय

0: डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
0: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी अगले वर्षों के अंदर, जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले, उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, सब परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की, अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहा है।

0: हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे, उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया। RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम है, थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीम राणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की और इतनी सारी चीज, मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा, इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी, जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, Tier 2 Tier 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं। प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बनाकर

0: उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से, लोगों से, साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 पहले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना, मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिल करके कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहां ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, जैसे हमारी महुआ की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आए

0: करेंगे, प्रधानमंत्री जी उसको शेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये दो दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारा सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है, कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जो बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री, तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो, तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000, 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्यघर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी, तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है ये लगाएंगे तो उसमें इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता, ये

0: बनी है, ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया। मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction, from earlier the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit, the private sector has a trust deficit, non-profits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll show you the rule. Now, this will obviously create a low trust society. But more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people, You know, Jan Vishwas as a concept, which I think represents the next wave or the next building on what has happened in the last 10 years, the next 10 years or 12 years, is about recognizing that if you write the laws for the chor, drunk driving is not an argument against cars. If you have a drunk driver, you don't ban cars. You issue licenses, you put the drunk driver in jail. But in India,

गीत मेरे मनमीत में एक बार फिर से मैं आप सभी का रितिका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 1971 में आई फिल्म दुश्मन का आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। और मंजू स्टूडियो में आ चुकी है कार्यक्रम निशिगंधा लेकर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी कल सम्मेलन में एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार सातवीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए। श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस

0: फ्रांस में मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने पर सार्थक बातचीत भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। और क्रिकेट में दांबुला में खेली जा रही 50 ओवरों की त्रिकोणीय श्रृंखला के एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया है। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान को हराना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state of honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Modi. Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor. Accepting the award, he noted that the honor was a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring bonds of the friendship between India and Slovakia. Prime Minister Narendra Modi is arriving in Evian, France today to participate in the G7 summit in the third leg of the two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome him. Meanwhile, the 52nd G7 summit is underway in Evian, France, with leaders of the world's leading economies holding discussions on major international challenges. French President Emmanuel Macron is hosting a

जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी उपस्थित हो तुम, जो जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी उपस्थित हो तुम, और अदृश्य की तरह मौजूद हो हर तरफ, दूरी में बहुत दूर, जैसे जिंदगी में ना की बिंदी, इश्क का आधाशा और इंतजार में आँख की मात्रा की तरह। स्वादिष्ट प्लव एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 7 सेकंड। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम निशिगंधा में, और हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

आते थे, मिलने जाते थे, अब तो सोशल मीडिया पर डीएम करने से प्यार का इजहार हो जाता है। खैर जमाना चाहे जो भी हो, पर प्यार का एहसास हमेशा ही खास होता है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप ही के लिए।

प्यार की गलियों में जाने का मन हम सबका करता है, पर आजकल प्यार की गलियां जो हैं वो बहुत बदल गई हैं। पहले लोग प्यार में खत लिखते थे, दूर दूर से मिलने

मुझे लगता है किस्मत की लकीरें भी मिट जाती हैं अगर दिल में चाहत सच्ची हो। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। प्यार में नसीब का होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन किसी को शिद्दत से चाहना, उसकी परवाह करना, उसकी यादों को अपने दिल में महफूज रखना, ये पूरी तरह से हमारे हाथ

में होता है। अगर आज की रात आपको कोई कश्मकश बन चुका है, आपकी यादों में कोई छा चुका है, तो उसे अपनी दुआओं में शामिल करिए, नसीब अपने आप बदल जाएगा। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

वैसे ये बात तो सच है कि जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी सादगी से, उसकी सीरत से प्यार होता है। और जब कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है तो वह अकेला इंसान अनमोल मोती से कम नहीं होता हमारे लिए। फिर ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और वो इंसान एक तरफ।

मैं हासिल की हुई चीज़ों को भूल जाता हूँ। मैं हासिल की हुई चीज़ों को भूल जाता हूँ। मुझे याद रहते हैं खोए हुए लोग। याद रखो कि इस पृथ्वी पर तुम एक गुम हो चुकी लड़की हो। मैं एक याद में जीने वाला लड़का हूँ। तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोकर याद रखूँगा। इसके पहले कि प्यार हो जाए तुमसे, तुम अभी इसी वक्त गुम हो जाओ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त से ढूंढना शुरू करता हूँ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 12:39:30। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप।

कभी कभी ना हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, और सच कहूँ तो किसी जवाब की हमें ज़रूरत भी नहीं होती। पता है आपको, दिन भर हम सब अपनी जिंदगी में बहुत बिजी होते हैं, खुद के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन जब रात को हम रुकते हैं, ठहरते हैं, तो सिर्फ हम वही महसूस करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और इस वक्त जो आप महसूस कर रहे हैं वही सच है। इस गाने को सुनने के बाद अगर आपके चेहरे पे स्माइल आई है और आपके जहन में कोई चेहरा आया है, तो यकीनन आपकी रात सदाबहार है। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, आप ही के लिए, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में अगला गीत।

सेल्सियस कम हो गया है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो हम हुए जज्बाती। वैसे हम सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स, ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो जब भी हमारी लाइफ में आता है तो हमारी ज़िंदगी महक उठती है। अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

आपसे फिर मिलने का वादा रहा 1:10 पर। अभी लेते हैं आपसे इजाजत। ऋषिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। आपसे थोड़ी देर में यानी कि 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियों पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज एवियों पहुंचेंगे। वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में G7 देशों, साझेदार देशों, विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बाद में वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र

0: आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future." He said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: President of Slovakia Peter Pellegrini has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross, first class, upon Prime Minister Modi. Mr. Modi expressed gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor. He said the award is a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring friendship between India and Slovakia. Prime Minister Modi is arriving in Evian, France today to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. He will be formally welcomed by the French President Emmanuel Macron upon arrival. Meanwhile, the 52nd G7 summit is underway in Evian, where leaders of the world's leading economies are discussing major global challenges. President Macron is hosting a working dinner on the theme, Working Together to Address Major International Challenges. Earlier, Mr. Macron formally welcomed the leaders of G7 countries, including US President Donald Trump and UK Prime Minister Keir Starmer. European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa are also attending the summit. Union, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal visited Sofia Antipolis, Europe's first and largest science and technology hub in France yesterday. Mr. Goyal also interacted with the industry leaders and invited them to become active partners in India's growth story. A special investigation team, the SIT, constituted to probe allegations of misappropriation of donations and valuables to the Ram Temple in Ayodhya has begun its investigation. The SIT is headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant with Inspector General of Police Kiran S. and Special Secretary Finance Department Neil Ratan as members. The team reached Ayodhya yesterday and began its probe. It also visited the Ram Temple premises along with the Ayodhya Commissioner and District Magistrate. The SIT was constituted by the state government following allegations of irregularities in the handling of

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 10 सेकेंड। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने, और कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। फिल्म का नाम था तीन देवियां, संगीत था एसजी बर्मन साहब का और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब। समय बदला, जमाना बदला, लेकिन इस गाने का जो चुलबुलापन था वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब ये बना था गीत तब था। अगर इस गाने ने आपके मूड को थोड़ा सा भी फ्रेश किया है तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे आने वाले गाने और भी एवरग्रीन है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज़ थी लता मंगेशकर की और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। अब हम सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म दुनिया ना माने।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

स्वादाश्पलवी मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:35 और 27 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। एक अभी मैंने बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ा, मुझे लगता है कि मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। महबूब का घर हो कि बुज़ुर्गों की ज़मीन, महबूब का घर हो कि बुज़ुर्गों की ज़मीन, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। अब ऐसी ही एक बात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से और एकदम अलग अंदाज में साहिर साहब ने भी लिखा है। आइए सुनते हैं साहिर साहब की कलम से महेंद्र कपूर की आवाज़ में अगला गीत।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म गुमराह से। और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1963 में। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था बी आर चोपड़ा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सुनील दत्त, अशोक कुमार, माला सिन्हा, निरूपा रॉय, देवेन वर्मा और शशिकला ने। संगीत था रवि का और गीत लिखे थे जाहिर साहब ने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इस फिल्म में शशि कला को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला था। और अब अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म कोहिनूर से।

अभी आप सुन रहे थे साल 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का ये सदाबहार गीत। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी। संगीत की इस महफिल ने अगर आपके दिल को छुआ है तो रेडियो से हटने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आगे आने वाला गीत आपको फिर से ज़रूर पसंद आएगा। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

गीत सुहानी प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें BML मुंजल पुरस्कार समारोह में कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक प्राचीन और जीवंत सभ्यता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रगति का लाभ केवल देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड

लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, एक ऐसा वक्त भी आता है चांदनी शब में, मेरा दिमाग मेरा दिल कहीं नहीं होता, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा ख्याल कुछ ऐसा निखर के आता है, तेरा विसाल भी इतना हसी

100.8 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। वक्त हुआ है 2:12 और 15 सेकेंड। मैं हूं आपके साथ आपके रात की हम सफर मंजू। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के जज्बात को, एहसास को गीतों से, अपनी बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में कार्यक्रम का आगाज करते हैं हम आशा जी और दिलराज कौर की आवाज़ के साथ।

भाई मौसम मस्ताना तो है लेकिन रास्ता बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं अपनी रात की हमसफर मंजू के साथ और हम जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

अच्छा एक बात बताइए, कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पर आपने ये लाइन किसी ना किसी के लिए ज़रूर गुनगुनाई होगी। गुनगुनाई है ना? मैंने भी गुनगुनाई है। भले ही वो प्यार झूठा रहा हो, पर दिल को जो सुकून मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। चाहे कोई इंसान, सामने वाला इंसान अपनी दिल की खिड़की को बंद कर ले, लेकिन हमारी कोशिश कभी भी कम नहीं होती। और यही प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कभी कभी मीठी मीठी बातें और सदाबहार गाने मिलकर एक ऐसा समा बांध देते हैं कि दिल अपने आप किसी के इंतजार में धड़कने लगता है।

एक दिन आएगा वो, एक दिन आएगा वो अपनी फुर्सतें समेट कर, और मैं बादलों के छोर से बरस कर उसकी आंखों से बह जाऊंगी। वो सहेजना चाहेगा मुझे अपनी हथेलियों में, मैं परछाई सी उसके सांचे में ढल जाऊंगी। वो पुकारेगा मुझे मौन के उस पार से, गूंजती रह गुजर पर मैं शब्द के अंतराल सी उसके होठों को छुआऊंगी। वो आएगा एक दिन और ठहरेगा मेरी छाँव में, उसको आँखों में समेट कर मैं प्रेम की पृष्ठभूमि में चली जाऊंगी।

0: वक्त हुआ है 2:39 और 22 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपके रात के हम सफ़र मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के एहसास को, रात के दर्द को बातों से, गीतों से और शायद कुछ गज़ल से समझने की कोशिश करते हैं। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।
1: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं, और पंचम मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती।

वैसे सच कहूँ, रात का ये जो वक्त होता है, ये जो पहर है, वो बना ही मोहब्बत के लिए होता है। मोहब्बत को महसूस करने के लिए, उसके दर्द को महसूस करने के लिए एक ऐसा वक्त है ये, जब चारों तरफ खामोशी है, लेकिन किसी ख़ास की याद ऐसे वक्त पर और ज़्यादा शिद्दत से आने लगती है। अगला गीत

वैसे सच कहूँ, रात का ये जो वक्त होता है, ये जो पहर है, वो बना ही मोहब्बत के लिए होता है। मोहब्बत को महसूस करने के लिए, उसके दर्द को महसूस करने के लिए एक ऐसा वक्त है ये, जब चारों तरफ खामोशी है, लेकिन किसी ख़ास की याद ऐसे वक्त पर और ज़्यादा शिद्दत से आने लगती है। अगला गीत मुकेश की आवाज़ में।

ये बिल्कुल सच बात है, पुरानी राहें होती ही ऐसी हैं, खूबसूरत भी और थोड़ी दर्द भरी भी। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए उन राहों को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। मुड़कर देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं रुक जाना जिंदगी नहीं होता। कभी कभार पीछे मुड़ना, बहुत पीछे रह जाना भी होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूँ आपके साथ मंजू। तो यादों के सफर से थोड़ा बाहर हम आने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी की नई राहों की तलाश करते हैं, नए सफ़र का आगाज़ करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी पीछे मुड़ना नहीं होता, ज़िंदगी आगे बढ़ना होता है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी सुरभि। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीस्तो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: इस बीच स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। केप वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस नतीजे को अब तक टूर्नामेंट का सबसे

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं सुरभि आपके साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर कुछ दांव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, अगर कुछ दांव पर रख दें सफर आसान होगा क्या, मगर जो दांव पर रखेंगे वो ईमान होगा क्या। कहानी का अहम किरदार क्यों खामोश है दानिश, कहानी का सफर आगे बहुत वीरान होगा क्या, मगर ये बात दुनिया की समझ में क्यों नहीं आती। अगर गुल ही नहीं होंगे तो फिर गुलदान होगा क्या, अगर कुछ दांव पर रख दें सफर आसान होगा क्या। भाई जिंदगी में दांव पेच लगे रहते हैं और दांव पेच से निकल कर ही हम असल जिंदगी को पा सकते हैं, और जब प्रेम इश्क मोहब्बत हो जाता है तब ये दांव पेच और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए हमराही प्रोग्राम हम और आप सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रही हूँ, तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस बेहद खूबसूरत पहले गीत के साथ। रफ़ी साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़, फिल्म है फिर वही दिल लाया हूँ।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि खुशबुओं की तरह महकते गए, खुशबुओं की तरह महकते गए, तेरी जुल्फों के साए डसते गए। मेरे सपने अजीब सपने थे, मौसमों की तरह बदल गए। न तू मिला न तेरे घर का पता, हम तेरी दीद को तरस गए। कई बार इश्क मोहब्बत में ये लम्हे भी आ जाते हैं जब एक दूसरे को देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, और कई दफ़ा ज़िंदगी इतनी खूबसूरत मुलाकात करवा देती है कि भाई ये ज़िंदगी और ये पूरा दिन, ये पूरा जीवन बड़ा ही खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है दो दिल।

वो एक चांद सा चेहरा जो मेरे ध्यान में है, वो एक चांद सा चेहरा जो मेरे ध्यान में है, उसी के साए की हलचल मेरे मकान में है। मैं जिसकी याद में खोया हुआ सा रहता हूँ, वो मेरी रूह में है और मेरी जान में है। वो जिसकी रोशनी से कायनात है जगमग, उसी के नूर का चर्चा तो कुल जहान में है। वो एक चांद सा चेहरा जो मेरे ध्यान में है, उसी के साए की हलचल मेरे मकान में है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

निकाब बेगुनाह है क्या कहना, क्या सफाई है वह क्या कहना। तुम ना रोको निगाह को अपनी, हम करें जब्त आह क्या कहना। तुझसे अच्छे कहाँ जमाने में, मुझसे टेढ़ी निगाह क्या कहना। तो चलिए अगला गीत हमराही प्रोग्राम में सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं जितनी देर तेरी याद में उदास रहा, मैं जितनी देर तेरी याद में उदास रहा, बस उतनी ही देर मेरा दिल भी मेरे पास रहा। अजब थी आग थी जलता रहा बदन सारा, अजब थी आग थी जलता रहा बदन सारा, तमाम उम्र वो होठों पे बन के प्यास रहा।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियो पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के अंतर्गत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की आशा है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। काबो वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोंजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तेलंगाना में लू का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं बेहद ही खूबसूरत बात के साथ। साथ क्या लाया था मैं और साथ क्या ले जाऊंगा, जिनके काम आया हूं मैं उनकी दुआ ले जाऊंगा। जिंदगी काटी है मैंने अपनी सहरा के करीब, एक समंदर है जो अपने साथ बहा ले जाऊंगा। तेरे माथे की शिकन को मैं मिटाते मिट गया, अपने चेहरे पर तेरा गम सजा ले जाऊंगा। साथ क्या लाया था और मैं साथ क्या ले जाऊंगा, जिनके काम आया हूं मैं उनकी दुआ ले जाऊंगा। जिंदगी में कभी कभी कोई इंसान एक ऐसी उम्मीद बनकर आता है कि वो हमारी ज़िंदगी को ही बदल देता है। उसकी मुस्कुराहट हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि खूबसूरती चेहरे में नहीं सोच और हौसलों में होती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर मुलाकात कुछ नया सिखाने के लिए आती है।

जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जिंदगी भी बदलती है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, हर अंधेरे के बाद एक नई शुरुआत आती है। इसीलिए उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि नई रुत भी बस आने ही वाली है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि साथ निभाने में होता है। जिंदगी में ऐसे रिश्तों की कद्र करना चाहिए जो मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ थाम कर रखें, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो आपको बेहतर बनने की

अरुणिमा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, जैसे चरखा लगातार हम चलता है और हमें मेहनत और लगातार आगे बढ़ने की सीख देता है और बिना रुके चलता है, वैसे ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम इंसानों को भी लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। छोटे छोटे कदम ही एक दिन हमें बड़ी मंजिल पर पहुंचाते हैं, तो बस रुकना मत।

और इसी के साथ अरुणिमा का यही संपन्न होती है। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर तेलंगाना और विदर्भ में लू का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future." In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
1: AI ka bhavishya keval innovation se nahi balki trust, responsibility aur human dignity par aadharit hona chahiye. Raksha sahyog hamare gehre aparichit vishwas aur strategic convergence ka praman hai. Is

प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं और ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। सरे शाम ठहरी हुई जमी, आसमां है झुका हुआ, इसी मोड़ पर मेरे वास्ते वो चराग लेकर खड़ा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो।

अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। जब मन उलझनों में घिर जाए तब उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी रास्ता दिखा सकती है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।